गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान और आप सुन रहे हो। वैसे आज की ना तो सुबह एक सिंपल थॉट आपको सुनाता हूँ। जिंदगी ना तो हर रोज एक नया चांस जरूर देती है, लेकिन हम अक्सर कल के गम में आज को इग्नोर कर देते हैं। सोच के देखो, एक साइकिल का हैंडल छोटा होता है लेकिन कंट्रोल उसके हाथ में ही होता है। वैसे जिंदगी का कंट्रोल भी ना हमारे डिसीजन में होता है, साइज नहीं सोच बड़ी होनी चाहिए, समझे जान। अगर तुम्हें लगता है कि कल कुछ गलत हुआ हो तो उसे सीख लो, लेकिन आज का दिन उस गिल्ट में बर्बाद मत करो। आज का दिन है कुछ नया करने का, कुछ बेहतर सोचने का और खुद पे भरोसा करने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुद पे भरोसा करना सीख लो। तो चलो यार, इस सुबह एक प्रॉमिस करो, मैं हर दिन अपने लिए जीऊंगा बिना रिग्रेट के, बिना डर के। अक्सर एक अपने आप में डर होता है, एक रिग्रेट होता है कल की गलतियों को लेकर। यार रात गई बात गई, याद रखिएगा और नई सुबह का आगाज कीजिएगा। अब चाय का कप हाथ में लो, स्माइल चेहरे पे लो और चलो करते हैं इस सुबह का थोड़ा और बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल विद आरजे अदनान। सो गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, हैशटैग कीप मुस्कुराना, मुस्कान की चमक एग्जैक्टली जैसी अभी आपके चेहरे पर आ रही है ना, वैसी अक्सर रखिएगा और पूरे दिन रखिएगा। आई नो दिन थोड़ा अच्छा भी होगा, थोड़ा बुरा भी होगा, लेकिन हम सहन कर लेंगे ना यार, हम सब कुछ कर लेते। सो हैव अ गुड डे एंड स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM। ओनली ऑन MGM 90.8

किस्सों का कारवां विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM। एक बार की बात है, एक बार एक गधे को जंगल के रास्ते में शेर की खाल मिली। उसने खाल पहनी और खुद को शेर जैसा देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो अकड़कर जंगल में चलने लगा। एक हिरन ने उसे देखा और डरकर भाग गया। फिर एक लोमड़ी उसके कदमों में गिरकर जान की भीख मांगने लगी। गधा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब तो सारे जानवर मुझसे डरते हैं। अब पूरे जंगल में डर का माहौल बनाने का वक्त आ गया है। वो कहते ना कि अपना टाइम आएगा, तो गधे को ऐसा लगा कि अब तो अपना टाइम आ ही गया। उसने सोचा, अब मैं शेर की तरह जोर से दहाड़ूंगा और सारे जानवर डर कर भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही गधे ने मुंह खोला, आवाज आई। शेर के हुलिये में गधे की आवाज सुनकर सब हैरान होने लगे। सारे जानवर चिल्लाए, अरे देखो देखो, ये तो गधा है। ये शेर की खाल पहनकर हम सबको बेवकूफ बना रहा था। फिर सभी जंगल के जानवरों ने उसका रूप देख लिया। गधा फिर से गधा ही बन गया। इस कहानी का मतलब सिंपल है, किसी सक्सेसफुल आदमी जैसा हुलिया बनाकर उस जैसे कपड़े पहनकर आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सक्सेसफुल होना है तो उस जैसी मेहनत, सैक्रिफाइस और डेडिकेशन होना ही चाहिए। ये बात समझिएगा। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

money!

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश पूरी करना मेरा काम है, बस आप अपनी फरमाइशें बताते रहिएगा। हेलो, यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और आज बहुत ही प्यारे और एकदम खूबसूरत गाने की फरमाइश हमारे पास आई है भीष्मा राउत इनके तरफ से इस गाने के लिए।
1: देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने भेजा।
0: देखा ना है रे, सोचा ना, बहुत ही बेहतरीन गाना है। बॉम्बे टू गोवा इस फिल्म से गाना है जिसको गाया था किशोर कुमार जी ने और इस गाने के डायरेक्टर थे RD बर्मन। और इस गाने के दरमियान ना तो उन्हें डांस भी करना था, लेकिन उस वक्त डांस के मामले में अमिताभ जी बहुत कमजोर थे तो उन्हें डायरेक्ट किया था महमूद जी ने और इस गाने में उन्होंने एकदम रिदम के साथ परफॉर्म किया था। वो कॉन्फिडेंस ना तो हमें ऑन स्क्रीन तो दिखाई देता ही है। तो चलिए फिर ये गाना भी हम एंजॉय करते हैं। बाय द वे, आपकी भी अगर कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। सो फरमाइशें बताइए और सुनते रहिए।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: टॉक अबाउट सिटी अपडेट। सिटी अपडेट पे बात कुछ इम्पोर्टेंट है भाई। तो कुछ ऐसी बात है कि देखो भाई, फिलहाल ना तो बरसात तो नहीं हुई इस साल, और जहाँ देखो वहाँ पर बस हमें सूखा सूखा नजर आ रहा है। और इस दरमियान ना तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है पानी की। जी हाँ, पानी की दिक्कत होती है, और हम लोग ऐसा पानी यूज करें जैसे कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा पानी है। तो मेरी जान भाइयों बहनों दोस्तों अजीज साथियों, आप सभी से दरख्वास्त है कि पानी का आहिस्ता से और जरूरी है उतना ही यूज कीजिएगा, और फजूल में पानी मत फेंकिएगा। कारण कि महानगर पालिका ने आता एक आदेश काढलेला आहे की जे पाण्याचा गैरवापर करणार आहेत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुद्धा करण्यात येईल आणि त्यांना फाईन सुद्धा लावण्यात येणार आहे। सो ऐसे फाईन लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ये सिंपल सी बात है, हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है की जरूरत है उतना ही पानी यूज कीजिएगा, फजूल में पानी मत फेंकिएगा। बट बड़े होने के बाद ये सारी बातें हम भूल जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पर ना तो लोग यूं ही पानी फेंक देते हैं, गाड़ी धोने के बहाने बहुत सारा पानी यूं ही वेस्ट हो जाता है, और घर पर नहाते वक्त भी शॉवर का यूज करते हैं तो उससे ज्यादा पानी वेस्ट होता है। तो ऐसा पानी यूज कीजिए जिससे जरूरत है उतना ही पानी आपको लगे और बाकी पानी आप सेव कर सके, क्योंकि आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि पानी की कमी तो हो ही सकती है, क्योंकि हमें पानी सप्लाई होता है जायकवाड़ी धरणसर, वहाँ की भी पानी की सिचुएशन आप देखोगे तो थोड़ा पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका असर सीधे हमारे शहर पर हो सकता है और होने भी वाला है। फिलहाल जो पानी आपको मिल रहा है किसी एरिया में 8 दिन में एक बार हो, किसी एरिया में समझो 2 बार मिल रहा है, तो आने वाले वक्त में वो थोड़ा शॉर्टेज भी हो सकता है। तो इन बात का ख्याल रखिएगा और जितनी पानी की जरूरत है उतना ही पानी यूज कीजिएगा। सिंपल सी बात है, अमल कीजिएगा इस बात पर एंड स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: अक्टूबर के महीने में ना तो सूरज देवता ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए, यानी कि अक्टूबर हीट के झटके तो हमें बैठ ही रहे हैं। और जायकोडी डैम से पानी का लेवल तेजी से कम होते हुए नजर आ रहा है और आने वाले 8 से 9 महीने हमारे शहर के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि फिलहाल सब तरफ सूखा सूखा और सूखा नजर आ रहा है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका ने अभी से एक्शन प्लान तैयार कर रही है और कहा गया है कि शहर में जितने भी कुएं हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या फिर प्राइवेट हो, उनका सर्वे करने का आदेश दिया गया है। और ऑफिशियल रिकॉर्ड में अभी तक ना 134 कुएं रजिस्टर है अपने शहर में। और इनका सर्वे क्यों करने वाले हैं जानते हो? क्योंकि आने वाले वक्त में अगर पानी की कमी हमारे शहर को महसूस हुई तो इन कुएं के जरिए ना अपने शहर को प्रॉपर तरीके से पानी प्रोवाइड कर सके। और आपको एक बात याद दिला दूं, 1972 का दुष्काल हम सभी को पता है, हमने इसकी कहानी अपने दादा दादी से सुनी होगी। तो उस दरमियान हिमायत बाग की फेमस शक्ल बौड़ी ने पूरे शहर की प्यास बुझाई थी और तब के दुष्काल में बिना तो ये कुआं बिल्कुल भी नहीं सूखा था। तो आने वाले वक्त में अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है तो हमारे शहर के जितने भी कुएं हैं ना, तो उनके जरिए शहर की प्यास बुझाने का काम ये महानगर पालिका करने वाली है। सो दोस्तों, सरकार अपना काम तो कर रही है, हमें भी अपना फर्ज निभाना होगा। पानी फजूल में वेस्ट मत कीजिएगा, जितना हो सके उतना उसको संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सेव वाटर ये बस एक कोट नहीं है, ये हमें अब जिंदगी में अमल करने वाली बात भी है। तो एक समझदार नागरिक बनिएगा और पानी वेस्ट मत कीजिएगा और सुनते रहिएगा।
1: Only on MGM 90.8 FM.

प्लास्टिक मुक्त छत्रपती संभाजीनगर ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती आणि मदात कुठेतरी ही एकदम लूज पडली होती। और हमें लग रहा था कि भाई ये तो बस चार दिन की चांदनी थी, उसके बाद क्या हर जगह हमें बस प्लास्टिक तो दिखाई देगा। महानगर पालिका जो एक्शन मोड पर थी और हर दुकानों पर जाकर चेक कर रही थी, कार्रवाई कर रही थी, और बीच में थोड़े दिन उन्होंने वो स्टॉप कर दिया था और फिर सिचुएशन जैसे की वैसी हो गई थी। और इस पर फिर बहुत उन्होंने नाम रखा और कहा कि यार महानगर पालिका का काम ऐसा ही होता है, चार दिन चलता है, पांचवें दिन बंद गिर जाता है। और इस और शायद से बात नगर पालिका को बहुत दिल को लगी और उन्होंने फिर से मुहिम शुरू कर दी है प्लास्टिक मुक्त छत्रपति संभाजी नगर। अब इसमें हो क्या रहा है कि अगर आपकी दुकान पर आप प्लास्टिक कैरी बैग यूज करते होगे, प्लास्टिक यूज करते होगे, जो प्लास्टिक यूज करते होगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। या फिर आप प्लास्टिक सेल करते होगे, प्लास्टिक कैरी बैग वगैरह, तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा लाखों का फिलहाल फाइन शहर को वसूल किया जा रहा है। तो आप सभी से दरख्वास्त है आणि एक विनंती आहे की जर तुम्ही कुठे मार्केट मध्ये जात असाल तर घरूनच एक बॅग घेऊन जा आणि दुकानांमधून प्लास्टिक कॅरी बॅग घेऊ नका। नाहीतर जे प्लास्टिक कॅरी बॅग ठेवतायत त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई होणार आहे आणि ज्यांनी ती प्लास्टिक बॅग घेतली आहे त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई होणार आहे। प्लास्टिक मुक्त छत्रपती संभाजीनगर हमें करना है तो शुरुआत हम सभी को अपने आप से करना ही पड़ेगी। आप कहोगे कि यार मेरे अकेले से क्या ही होगा, वो महात्मा गांधी जी कहते हैं ना कि एकला चलो रे, अकेले से शुरुआत तो कीजिएगा, धीरे धीरे बदलाव आपको पूरे शहर में नजर आएगा, बट शुरू करना पड़ेगा हमें खुद से, क्योंकि प्रशासन तो रूल्स और रेगुलेशन लाएगा ही, हम खुद ने वो चीज अमल की ना अपने मन से, तो जरूर अपना शहर प्लास्टिक फ्री हो ही जाएगा। सो अमल कीजिएगा और शुरुआत खुद से कीजिएगा, समझे? आई नो आप समझदार हो, समझोगी ही। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: से एक बार अपने शहर में हो गया है डिजिटल अरेस्ट और इसके चक्कर में लाखों रुपए अकाउंट से गायब हो गए। तो बात कुछ ऐसी कि एक लेडी है अपने शहर में जिन्हें कॉल आता है और कहते हैं कि तुमचं आधार कार्ड चोरून एका बँकेत बनावट खाते उघडण्यात आले आहे आणि त्यातून टेरर फंडिंग होत आहे आणि मनी लॉन्ड्रिंग सुरू आहे। 2 तासात तक्रार नोंदवली नाही तर तुम्हाला जेलमध्ये जावं लागेल। और ये बात सुनने के बाद उन लेडी को लगा कि भाई ऐसा तो सच में हो गया है शायद मेरे साथ, और उनकी एज भी 70+ थी और उन्हें लगा कि अब मैं अरेस्ट नहीं होना चाहती हूँ और इन सब चीजों से मुझे बाहर निकलना है। तो स्कैमर ने क्या कहा कि अभी हम आपको डिजिटल अरेस्ट करने वाले हैं, आप हमारे सामने से कहीं जा नहीं सकते, अगर आपको इससे छुटकारा चाहिए तो आपको 13 लाख रुपए भरना पड़ेगा। उन्हें लगा कि यार ये सब चीजों से बचना है तो मैं 13 लाख पे करूंगी। उन्होंने वो 13 लाख रुपए पे कर दिए और ये हो गया उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट के नाम से। हालांकि ऐसा 3 करोड़ का भी फ्रॉड अपने शहर में हुआ था कुछ दिन पहले ही और ये एक सामने आया है नया फ्रॉड। तो भाई साहब, बहन जी, दादाजी, दादी, आप सभी से दरख्वास्त है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। ऐसा खुद पुलिस डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि ऐसा कोई अरेस्ट होता ही नहीं है। और ऐसे डिजिटल अरेस्ट ना आज के वक्त में बुजुर्ग लोगों के साथ बहुत हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ना तो इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। यूथ से एक दरख्वास्त है कि आपके मम्मी पापा, दादा दादी हो, जो भी बुजुर्ग इंसान हो, उन सभी को इस बारे में अवेयर कीजिएगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। और अगर कोई आपको फोन करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे तो उसे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मत कीजिएगा। एक अवेयरनेस से क्या पता सामने वाले का लाखों का नुकसान होते होते रह जाए। तो ये बात समझाना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होना इसकी बहुत जरूरी है। तो सभी से दरख्वास्त है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती, तो ऐसे फ्रॉड का शिकार मत बनिएगा। बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: सोचो जरा, लाइट की हेल्प से ब्रेन की स्पेसिफिक सेल को ऑन ऑफ किया जा सके तो। वैसे साइंस फिक्शन लगता है ना ये, लेकिन ये पॉसिबल बनने वाली रिसर्च के लिए 2026 का नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 3 साइंटिस्ट को दिया जाने वाला है, पीटर हेगेमैन, जॉर्ज नेगल एंड कार्ल डेसिरोथ। हेगेमैन और नेगल ने एक सिंगल सेल एल्गी में चैनल डिसोप्सिन नाम की लाइट सेंसिटिव प्रोटीन डिस्कवर और अंडरस्टैंड किया है। सिंपल लफ्जों में बताए तो ये प्रोटीन लाइट को सेल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इस डिस्कवरी को कार्ल डेसिरोथ ने न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन सेल पर अप्लाई किया। इसी से डेवलप हुआ ऑप्टोजेनेटिक्स, जिसमें लाइट की हेल्प से स्पेसिफिक न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कंट्रोल और स्टडी की जा सकती है। इस टेक्निक से साइंटिस्ट ब्रेन में मेमोरी, इमोशंस और बिहेवियर से जुड़े न्यूरॉन्स समझने में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो कहानी सिंपल है, एल्गी से डिस्कवरी शुरू हुई, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन समझ गया और वही टेक्नोलॉजी ब्रेन के सीक्रेट समझाने का पावरफुल टूल बनने वाली है। इस रिवॉल्यूशनरी वर्क के लिए इन तीनों को, पीटर हेगेमैन, जॉर्ज नेगल एंड कार्ल डेसिरोथ को नोबेल प्राइज से नवाजा जाएगा। सो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट था, स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: फिल्मी दुनिया में कुछ ना कुछ तो हर दिन होता ही रहता है। तो सबसे पहले बात है अजय देवगन की दृश्यम 3 की, और दृश्यम 3 द कंक्लूजन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में स्ट्रांग ओपनिंग के बाद चौथे दिन तक वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ की कमाई भी की है। विजय सालगांवकर की कहानी का सस्पेंस ऑडियंस को थिएटर तक लेकर जाने पर मजबूर कर ही देता है। तो आपने देखी या नहीं अब तक दृश्यम 3? और मैंने तो अभी नहीं देखी, मैं देखने वाला हूँ, लेकिन लोग कह रहे थे कि भाई दृश्यम 3 कंक्लूजन तक बस हो गया, आप यहाँ पर ये कहानी को यहीं एंड कर दीजिएगा, वरना खुद वो लाश बाहर आकर कहेंगे कि भाई बस भी कर, मुझे सुकून से मरने तो दे। खैर फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है, रिव्यू भी बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, तो आपने देखी नहीं है तो देख लीजिएगा। और एक अपडेट है कि आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की उड़ता तीर जो पहले 9 अक्टूबर को आने वाली थी उसको अब पोस्टपोन कर दिया गया है, 30 अक्टूबर 2026 को ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। तो भाई बॉलीवुड में कहानी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलती, रिलीज डेट्स, बॉक्स ऑफिस और सेट पर भी फुल ऑन ड्रामा चलता ही रहता है। ऐसी फिल्मी अपडेट के लिए मैं आपके साथ बना रहूंगा कुछ देर के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: इस गाने में कहानी है इंतजार की। यहाँ एक प्रेमिका अपने दूर देश गए हुए प्रेमी का इंतजार कर रही है। चौधरी लव रिप्रेजेंट करता है उस प्रेमी के लिए और वो कहती है तुम छुपो मत, मुझे अपना दर्शन करवाओ।
1: छुपना जाओ जी, मनदीत कराओ जी।
0: और यहाँ पर वो एक प्यारी सी धमकी देती है, चौधरी मैं तुम्हारी सारी शरारतें जानती हूँ, मुझसे पंगा ना ले।
1: हरी शरारत सब जानू मैं तो धरी।
0: और इसी गाने में दो लव्स बहुत मायने रखते हैं, ह्यूडा यानी कि दिल, धोकनी जो कि लोहार यूज करता है। जैसे धोकनी से आग बढ़ती है वैसे उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है।
1: मर!

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET स्क्रीनिंग, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

Yeah.

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू? हाय

हाय एवरीवन, कुक एंड बेक विद राजश्री अग्रवाल। इस शो में मैं राजश्री अग्रवाल, डायरेक्टर एंड फाउंडर एट श्री कुकिंग एंड बेकिंग क्लास, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। शाद चल रहे हैं और ऐसे में खीर हमारे यहाँ पे रोज बन रही है ना। आज किसी के घर, कल किसी के घर, तो खीर जो हमारी पारंपरिक खीर है वो भी कैसे बनाना है, इसका भी एक मेथड होता है। आप सभी बनाते हो थोड़ी सी अलग तरीके से, आज कैसे बनाना है वो देखते हैं। देखो, कभी भी हम जब कुछ भी बनाना होता है, जैसे श्राद्ध है, तो हम कोशिश करते हैं कि घर पर ही वो चीज़ बने और अच्छे तरीके से हम उसे बनाएं, ताकि वो सबको पसंद भी आए और सब लोग खाए भी। सो गाढ़ी मखमली ऐसी खीर बनना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने चावल कौन सा लेना है। तो आप यहाँ पे बासमती चावल जो होते हैं वो ले सकते हो खीर बनाने के लिए, जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है उसके लिए, ठीक है। अभी देखो, दूध जो है वो भी आपने फुल फैट मिल्क लेना है, क्योंकि अगर आप दूसरा कोई दूध लेते हो तो वो उतना थिकनेस उसमें नहीं आता है। सो अगर आप फुल फैट मिल्क लेते हो, फुल फैट है ना जिसका क्रीम निकाला हुआ नहीं है, है ना, तो हमें खीर बनाना है तो दूध भी हमें क्रीमी ही लेना पड़ेगा। सो फुल फैट मिल्क लेना है। अभी हम 1 लीटर का मेजरमेंट है, इसकी सामग्री हम देख लेते हैं कि अगर आपको 1 लीटर दूध की खीर बनानी है तो आपको इंग्रेडिएंट्स कितने कितने लगेंगे, ठीक है। आप इस हिसाब से अगर आपको 2 लीटर की बनानी है या आपको 3 लीटर का बनाना है तो आप उस तरह से बना सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हमें दूध लगेगा, फुल फैट मिल्क, वो हमें लगने वाला है 1 लीटर, ये आपने ले लेना है। इसके बाद में बासमती चावल, ये आपको 1/4 कप, एक नियर अबाउट बोल रही हूँ मैं, आप थोड़े से कम ज्यादा कर सकते हो, ओके। तो एक 50 ग्राम के करीब होते हैं 1/4 कप अगर आप मान के चलो तो, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, एक 10 से 20 मिनट आपको इसको धो लेना है, इसको अच्छे से पहले तो वॉश कर लेना है 2-3 पानी से। उसके बाद में आपको इसको एक 10 से 20 मिनट भिगो कर रखना है, ठीक है। मतलब बासमती चावल ले लिया आपने, एक 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया उसको, और सफेद पानी पूरा निकाल देना है जो भी जाएगा। उसके बाद में आपको इसको एक 10 से 20 मिनट भिगो कर रख देना है। अभी आपको इसको 20 मिनट के बाद में निकाल कर इसे हल्के से एक मलमल के कपड़े पे सुखाना है, फैन के नीचे ही, ओके। मतलब इसमें का पानी जो है वो निकल जाए, या तो आप छन्नी पर भी डाल सकते हो, छन्नी पे ले लिया, एक्सेस वाटर जो भी है वो निकल जाएगा और ऊपर छलनी पर जो भी ये बचेगा राइस, वो उसमें पानी नहीं रहेगा, इस तरह से भी आप कर सकते हो। सो देखो, चीनी लगेगी हमें यहाँ पे 6 से 7 टेबलस्पून। अभी देखो, ये हमने एक अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट लिया है, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा, आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आपने चीनी 1-2 टेबलस्पून बढ़ा देना है, अगर आप चीनी कम खाते हो तो 1-2 टेबलस्पून कम कर देना है, तो 5 टेबलस्पून भी आप डाल सकते हो। ये 1 लीटर का मेजरमेंट है, ठीक है, इस हिसाब से आप कितना भी मेजरमेंट का बना सकते हो। इसके बाद में हमें लगेगा यहाँ पे हरी इलायची का पाउडर, जो लगेगा हमें यहाँ पे 1/2 टीस्पून। उसके बाद में हमें लगेगा सैफरन, केसर की डंडिया, एक 10 से 12 धागे, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून गुनगुने दूध में आपको इसको भिगो कर रख देना है, ठीक है। इससे क्या होता ना कि वो कलर जो है वो अच्छा आ जाएगा और अच्छी तरीके से उसमें घुल भी जाएगा। इसके बाद में हमें ड्राई फ्रूट्स लगेंगे 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून भी आप ले सकते हुए, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स आपको लेना है, ठीक है, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता के टुकड़े, ये सभी, और आप अपने पसंद अनुसार कुछ भी डाल सकते हो। और देसी घी लगने वाला है हमें यहाँ पे एक 1 टेबलस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून भी ले सकते हो अगर कम डालना है तो आपको। अभी हम प्रोसीजर देखते हैं कि ये जो सामग्री हमने ली है इससे आपको खीर बनानी कैसी है। तो देखो, बनाने की विधि ऐसी है कि सबसे पहले हमने जो चावल लिए है इसको हमें तैयार करना होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले भिगे हुए चावल का आपको पानी जो है ये छान लेना है, और आपको इसको एक कपड़े पर एकदम पतली सी परत डालकर सुखा लेना है फैन के नीचे,
ओके अभी इसमें से आपको क्या करना है, एक टेबलस्पून चावल जो है इसको आप अलग निकाल लोगे और बचे हुए हुए जो चावल है इनको हल्का सा पल्स कर लेना है, मतलब दर दरा आपको पीसना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है। ओके क्रश यानी हल्का सा पल्स मोड पर आपको मिक्सी में इसको चलाना है। देखो पाउडर बनाओगे ना तो वो पूरा ऐसे घुल जाएगा उसमें, और थोड़ा सा दरदरा रखोगे ना तो वो टेक्सचर बहुत अच्छा आता है ना, खीर को एक्स्ट्रा क्रीमी और गाढ़ा बनाने के लिए हेल्प करता है अगर आप इसको दरदरा रखते हो तो। तो देखो इस तरह से हमने चावल जो है ये तैयार कर लेना है। उसके बाद में आपको इलायची का पाउडर जो है ये भी रेडी करके रख लेना है। केसर की जो डंडिया थी इसको भी हमने दूध में भिगो कर रख दिया था। ओके एक 10 से 20 मिनट के लिए थोड़े से गुनगुने दूध में 10 से 12 धागे हमने केसर के डाल दिए। अभी चीनी हमने निकाल के रख दी और ड्राई फ्रूट्स जो है इसको आपने दरदरा कूट लिया है। ओके तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स भी हमने रेडी कर लिए हैं। अभी देखो आपको क्या करना है, एक भारी तले का बर्तन लेना है जिसका बॉटम जो है ये हैवी हो, है ना, जो भी पैन आप लोगे ये हैवी बॉटम वाला होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसमें दूध डालते हो ना तो दूध जल्दी से चिपकने लगता है नीचे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पैन जो हैवी बॉटम का होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जब आप दूध डालते हो तो हैवी बॉटम की वजह से दूध हम काफी देर तक उसमें उबालते हैं ना, तो वो लगता नहीं है नीचे। सो इसके लिए टिप क्या है ना कि अगर आपका दूध जो है ये तले से ना लगे, इसके लिए आपने इसके ऊपर हल्का सा थोड़ा सा पानी छिड़कना है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि दूध नीचे चिपकता नहीं है और आप कितनी भी देर उबालो तब भी दूध नीचे नहीं लगेगा। हाँ ऐसे नहीं है कि आपने डाल के और छोड़ देना है कि नहीं अभी पानी डाला है, तो बिल्कुल आपने ओकेजनली उसको चलाना है, लेकिन जो चिपकने का ये होता है उसका वो कम हो जाता है कि जल्दी से चिपकेगा नहीं, ओकेजनली तो आपको चलाते ही रहना है, ठीक है। सो आपने मोटे तले का पैन ले लिया हैवी बॉटम, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी छिड़का और पूरा 1 लीटर दूध आपने इसके अंदर डाल देना है। अब दूध डालकर इसको अच्छे से उबाल आने देना है, उबाल आने तक आपने इसमें चावल डालना नहीं है। अभी जब दूध में उबाल आ गया है और कुछ देर दूध उबल चुका है, हाँ उबाल आने के बाद में और कुछ मिनट आपको रहने देना है गैस पर ही। उसके बाद में हमने जो क्रश किए हुए चावल थे, देखो 1 चम्मच जो है वो हमने साइड में निकाल कर रखा था और बाकी के जो है हमने पल्स पर चलाकर इसका एक दरदरा सा पाउडर बनाया था, है ना। पाउडर फाइन नहीं बनाना है, दरदरा ही बनाना है, तो ये आपको इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अभी देखो जैसे हमने चावल इसमें डाल दिया, आपको गैस की फ्लेम को धीमा कर देना है ना, सबसे लोवेस्ट फ्लेम पे ही आपको अब गैस को ऑन रखना है, ठीक है। चावल को दूध में अच्छे से पकने देना है, क्योंकि अगर आप फुल फ्लेम पर करोगे ना तो दूध थिकन होने लगेगा और चावल जो है ये पकेंगे नहीं, वो कच्चे रह जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपका गैस का फ्लेम जो है ये आज सबसे धीमी होनी चाहिए और उसके अंदर आपने चावल डालना है और इसको ओकेजनली बीच बीच में आपने चलाते रहना है। तब तक चलाना है जब तक कि चावल पूरी तरह से पक नहीं जाते। अभी आप क्या करोगे ना, छोटा सा एक पीस उसमें से निकाल कर एक प्लेट में बाहर ले लेना है और हाथ से उसको ऐसे मैश करके देखना है। अगर वो मैश हो रहा है इजीली तो आपके चावल जो है ये अच्छे से पक गए हैं। अगर उसमें कहीं ना कहीं कच्चापन है या आप हाथ पे उसे रगड़ रहे हो तो उसमें से अंदर की साइड व्हाइटिश दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका चावल जो है वो कच्चा है, अभी पका नहीं है। सो इसके लिए आपको गैस की एकदम धीमी कर देनी है और इसको पकने तक रहने देना है, ठीक है। हर 2 से 3 मिनट में आपको चलाते रहना है और जो किनारों पर मलाई जमती है, जैसे हमने गैस ऑन रखा है सो दूध में बार बार उबाल आते रहता है और ऊपरी साइड जो है वो मलाई जो है वो लगते रहती है, उसको आपको धीरे धीरे खुरच कर वापस दूध में मिलाते जाना है। तो इसमें क्या होता है ना कि खीर को रबड़ी वाला टेक्सचर आता है, कि रबड़ी में जैसे इसके लच्छे होते हैं ना मलाई के, तो वैसे लच्छे जो है वो आपकी खीर में आते हैं। सो ऊपर जो भी दूध आ रहा है या लग रहा है वो आपको खुरच कर निकालते जाना है और वापस आपको खीर में उसे ऐड करते जाना है। इससे हमारी खीर जो है ना रबड़ी जैसी
बनने लगेगी। सो वो जो रबड़ी वाला टेक्सचर है वो हमारी खीर में आ जाएगा। ओके, अभी आपको एक सीक्रेट टिप बताती हूँ। ओके, देखो काजू और चावल का एक सीक्रेट पेस्ट बनाना है। ये क्या काम करेगा कि हमारी जो खीर है, अभी देखो हमने वो कुरच कर अंदर डाला पूरा मलाई वाला पार्ट, उससे तो उसे रबड़ी जैसा टेक्सचर आ गया है। अभी और थोड़ा सा थिकनेस लाने के लिए, अगर आपको खीर देखो यूजुअली थोड़ी सी पतली होती है ना कंपैरेटिवली रबड़ी खीर, तो आपको इसको अगर थोड़ा सा गाढ़ापन लाना है तो आपने एक चम्मच चावल जो हमने निकाल के रखे थे, देखो 1/4 कप चावल पूरे लिए थे हमने, उसमें से कुछ चावल जो है इसको दरदरा पीस कर हमने खीर में ऐड करा था पकाने के लिए, लेकिन एक चम्मच चावल जो हमने साइड में निकाला था 1 टेबल स्पून, अभी वो आप एक मिक्सी के जार में लोगे, चटनी वाला छोटा पॉट रहता है उसमें लेना है क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है तो वो अच्छे से पीसना चाहिए, और 7 से 8 काजू आपको ले लेना है। और अभी आपको क्या करना है ना, इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। ठीक है, पहले आपने इसको ड्राई पीस लिया, एकदम फाइन पीस लिया, उसके बाद में आपने उसमें 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड करना है। ओके, ठंडा दूध डालोगे उसमें और फिर आपको इसको मिक्सी में से फिर से अच्छे से पीस लेना है। ओके, तब तक पीसोगे जब तक कि इसका स्मूथ टेक्सचर नहीं आ जाता है। टेक्सचर एकदम स्मूथ आना चाहिए तभी वो हमारी खीर में अच्छे से घुल जाएगा। अगर वो दरदरा बचता है तो देखो हमने दूध ऑलरेडी उबाल लिया है, चावल जो है वो हमने ऑलरेडी पका लिए है। अगर आप ये चावलों को अगर मोटा रखते हो तो फिर ये कच्चे रह जाएंगे या पकने के लिए और समय लेंगे, और तब तक हमारे जो पहले वाले चावल है वो ज्यादा कुक हो जाएंगे। ठीक है, सो इसके लिए आपको इसका स्मूथ पेस्ट ही बनाना है, इसको बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। ओके, अभी ये जो पेस्ट है ना, सो इसी के लिए जब चावल पूरे पक जाते हैं तब ऐड करने की बजाय जब चावल आधे पक चुके हैं। ओके, जैसे दूध में उबाल आया हमने उसमें चावल डाला, अभी चावल पूरे पके नहीं है आधे ही पके हैं, तब आप ये वाला पेस्ट जो है ये ऐड करिए उसके अंदर। ओके, कब, जब आधे चावल पके हुए हो तो ये तब डालोगे ना तो इससे खीर एकदम हमारी मलाईदार बनेगी। ओके, काजू से क्या होता है ना उसको थिकनेस आता है और गाढ़ापन आने की वजह से खीर भी जो है वो उसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, मलाईदार बनता है। अब ये डालकर आपको अच्छे से मिक्स कर देना है और अब पूरी तरह से चावलों को पकाना है, जो हमने पहले डाले हैं वो भी और अभी जो डाले, अभी तो स्मूथ पेस्ट है ये बहुत जल्दी से पक जाते हैं, और पहले वाले चावल जो है वो आपको हाथ से जैसे अभी हमने बताए हैं उस तरह से आपको चेक करके फिर आपको पता चलेगा कि चावल पूरी तरह से कुक हो गए हैं। अभी आपको इसके अंदर ऐड करना है, जैसे आपने चेक किया और आपको पता चल गया कि चावल आपके अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, उसके अंदर के पूरी तरह से पक चुके हैं। अभी आपको इसके अंदर जो हमारा दूध था केसर वाला दूध, ओके, जिसमें हमने सैफरन के स्टिक्स 10 से 12 भिगो कर रखे थे, वो आपको पूरी तरह से इसके अंदर ऐड कर देना है, और इलायची का पाउडर जो है वो भी इसके अंदर डाल देना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। ओके, चम्मच से कंटिन्यूस चलाते रहो इसको जब मिक्स कर रहे हो, और अब आपको इसके अंदर चीनी भी ऐड कर देनी है ना, अपने हिसाब से कम या ज्यादा आप कर सकते हो, या तो 6 से 7 टेबलस्पून आपने चीनी ऐड करनी है। अभी देखो चीनी जब पिघलती है, अभी हमने जैसे चीनी ऐड करी तो चीनी जब पिघलती है तो इसके बाद ना खीर थोड़ी सी पतली हो जाती है, कंसिस्टेंसी इसकी लूज हो जाती है क्योंकि चीनी पानी बन जाती है ना पिघलने के बाद में, सो खीर हमारी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो इसके लिए अब क्या करना है, चीनी डालने के बाद में हमको इसे एक 5 से 7 मिनट तक फिर से धीमी आंच पर होने देना है, क्योंकि चीनी डालने की वजह से कंसिस्टेंसी जो लूज हो गई थी वो फिर से गाढ़ी हो जाएगी, है ना, तो हमें पतला नहीं चाहिए, खीर पतली अच्छी नहीं लगती है, कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी ठीक चाहिए, तो इसके लिए आपको फिर से इसको एक 5 से 7, याद रहे कि गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखना है आपको, कम गैस पर ही आपको इसको पकाना है। ओके, अभी आपको क्या करना है ना, अलग से एक पैन लेना है, जब तक कि इधर 5 से 7 मिनट खीर हो रही है, सो अलग से एक साइड में आप अलग से पैन रखोगे,
और उसमें आपने एक टेबल स्पून या वन टी स्पून घी ऐड कर देना है। ठीक है, अभी जो ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े हमने डाले थे साइड में कूट कर रखे थे वो आपने इसके अंदर डाल देना है और इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेना है घी में। इससे इसका टेस्ट जो है वो एनहांस हो जाता है और बहुत अच्छा स्वाद ये देगा आपको ड्राई फ्रूट्स, है ना। ड्राई फ्रूट का कच्चापन जो है थोड़ा सा निकल जाता है तो ये टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप वैसे भी डाल सकते हो अगर आपको घी में भून कर डालना पसंद नहीं है तो, लेकिन अगर आप डालना चाहो तो इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो। सो ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लिया और खीर में आपने इसको मिला दिया। ठीक है, अभी देखो चावल पूरी तरह से पक चुके हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हमने ऐड कर दी। चीनी के बाद में हमने इसको एक 5 से 7 मिनट अच्छे से होने भी दिया और एट द एंड हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। ठीक है, अभी ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद 1 मिनट तक इसको होने दो और फिर से खीर को गैस पर, और 1 मिनट के बाद में आपको गैस जो है ये बंद कर देना है। ठीक है, अभी गर्म जब है तब भी आप इसको सर्व कर सकते हो, लेकिन खीर अगर ठंडी होने के बाद अगर आपने सर्व करी तो और गाढ़ी हो जाती है वो थोड़ी ठंडी होने के बाद में, या बहुत से लोग इसको फ्रिज में रख देते हैं कि गाढ़ापन जो है वो जल्दी से आ जाता है अगर आप फ्रिज में रखते हो तो वो भी चलेगा। फ्रिज में रख कर भी आप ठंडी कर कर भी फिर आप खा सकते हो। ओके, सो इस तरह से, तो देखो इस तरह से हमने खीर जो है ये बना ली है। अभी थोड़े से टिप्स जो है अलग से वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। अभी देखो अगर आपको खीर में कैरमल का फ्लेवर पसंद है तो कैरमल ट्विस्ट कैसे देना है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो कैरमल ट्विस्ट देने के लिए अगर आपको कैरमल फ्लेवर पसंद है तो सीधे चीनी को, जैसे हमने डाल दिया 5-6 चम्मच चीनी ली और वो हमने खीर में ऐड कर दी, इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, एक अलग से पैन लिया आपने उसके अंदर चीनी डाली, अभी चीनी डाली और बिना पानी के गैस ऑन कर दिया, है ना, पानी नहीं डाला है चीनी में हमने, सिर्फ चीनी डाली है और धीमी आंच पर हम उसको पिघला रहे हैं। ओके, पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बस चीनी को ही वैसे ही धीमी आंच पर मेल्ट करना है आपको जब तक कि वहाँ गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। कब तक आप मेल्ट करोगे, जब तक वो, मतलब पहले वो मेल्ट होगी और फिर उसमें गोल्डन ब्राउन कलर आने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक ही आपको करना है ना, इससे ज्यादा करोगे तो वो हार्डनेस आ जाएगी उसमें, तो वो हार्डनेस नहीं लाना है आपको, बस गोल्डन ब्राउन होता है जैसे ही कलर मेल्ट होने के बाद में, तो फिर आपको उसको खीर में जो है वो ऐड कर देना है। ऐड करने के साथ में आपको आपका स्टरिंग जो है चम्मच चलाना कंटिन्यूस ऑन रखना है जब आप ये कैरमल ट्विस्ट दे रहे हो। ठीक है, कंटिन्यूस मिलाते रहो और एक साइड से आपको वो जो हमने मेल्टेड चीनी है पैन में अलग से करी हुई वो आपको डालते जानी है। इससे खीर को एक बेहतरीन स्वाद भी आता है और सुंदर रबड़ी जैसा रंग भी मिलता है, क्योंकि वो ब्राउन कलर का हो जाता है चीनी जब मेल्ट हो जाती है तो वो वाला कलर इसमें आ जाएगा ब्राउन रबड़ी जैसा, और इससे ना टेस्ट भी थोड़ा सा, जिनको कैरमल का टेस्ट अच्छा लगता है तो वो लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इस तरह से डालोगे तो वो वाला टेस्ट भी आएगा और कलर भी दिखेगा। तो अगर आप थोड़ा सा अलग कुछ करना चाहते हो तो इस तरह से कैरमल ट्विस्ट आप दे सकते हो जो हमारी रेगुलर खीर है उसी में ही। और इसमें और एक चीज कर सकते हो, ड्राई फ्रूट पहले न डालते हुए ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा ज्यादा रोस्ट कीजिए। जैसे हमने 1 से 1.5 मिनट रोस्ट किया और तुरंत से डाल दिया जब हमने नॉर्मल खीर बनाई, बट जब कैरमल ट्विस्ट दे रहे हो तो ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का सा ब्राउन करो और फिर बस गार्निशिंग के लिए ऊपर से आप यूज कर सकते हो। खीर के अंदर अगर आपको ऐड करना है तो जैसे हमने पहले हल्का सा रोस्ट करके और ऐड किया वैसे भी कर सकते हो, और अगर ऊपर से गार्निशिंग में अच्छा दिखना है आपको, जैसे इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनी दिख रहा है आपको अच्छे से, तो उसी तरह से ड्राई फ्रूट्स भी हल्के ब्राउन दिखेंगे, तो गार्निशिंग के लिए आप थोड़े से ब्राउन करके भी ऊपर से डाल सकते हो। तो इस तरह से देखो आप अलग अलग वेरिएशन में खीर जो है वो बना सकते हो। अभी देखो इस तरह से तो आपने बना लिया है। अगर आप चीनी नहीं यूज करना चाहते और उसके जगह अगर आप कंडेंस्ड मिल्क डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से अगर आपको करना है तो मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं
तो जैसे आपने खीर बना ली, उसके बाद में उसको हम जैसे निकालते हैं ना सर्विंग बाउल में, तो आपने वो कुल्हड़ में निकालना है मिट्टी के, ठीक है। और फ्रिज में आपको इसको एक 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है ढककर। तो इससे क्या होगा ना, ये जब सेट हो जाएगी ना, तो मिट्टी के बर्तन क्या करते हैं ना, खीर में का जितना भी मॉइस्चर है वो पूरा सोख लेते हैं। इससे क्या होता है कि खीर एकदम गाढ़ी मलाई जैसी हो जाती है और मिट्टी की हल्की सी खुशबू उसके अंदर आती है, तो वो टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास में अवेलेबल है घर पर मिट्टी का कुल्हड़, तो आप उसमें भी रख सकते हो। अभी जब हमने गैस पर से खीर को उतार लिया है, हाँ, उतारने के बाद में उसको थोड़ा सा ठंडा करो, गर्म ही ना रहे, हल्का सा ठंडा हो जाए, उसके बाद में आप 1-2 से 3 बूंदे केवड़ा वाटर आता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, या तो जो खाने वाला गुलाब जल मिलता है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा अगर आप इस तरह से वो डालोगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और दूसरी चीज की, अगर आप प्योर जो चांदी का वर्क मिलता है, देखो आजकल मार्केट में फेक वर्क भी बहुत मिलता है जो आसानी से 80 से 100 रुपए में मिल जाता है, लेकिन वो एडिबल नहीं है, हम नहीं खा सकते हैं। तो अगर आपके पास में प्योर चांदी का वर्क अवेलेबल है तो ही आपने डालना है इसके अंदर, ठीक है, जिसे आप खा सकते हो। तो खाने वाला जो वर्क है वही डालना है, जो आर्टिफिशियल मिल रहा है वो आपने नहीं यूज करना है। तो इससे ना एक शाही लुक जैसे हम बोलेंगे, चांदी का वर्क जैसे लगता है, तो बिल्कुल हलवाई जैसे शाही दिखने लगेगी आपकी खीर जो है, ओके। तो ये आपको सर्व करते समय बाउल में जब आपने सर्व किया तब आपने डालना है, ठीक है। इवन केवड़ा वाटर भी आप हर एक बाउल में एक एक बूंद भी डाल सकते हो, तो इससे इसका स्वाद भी अच्छा आता है उसमें और लुक भी उसका शाही दिखता है। अभी और एक टिप जो है कि दूध जो है आपको हमेशा, अगर खीर गाढ़ी बनाना है तो भैंस का ही यूज करना है ना, जिसको फुल फैट मिल्क बोलते हैं, जिसमें से हमने क्रीम निकाला हुआ नहीं होता है। बाकी कोई भी दूध अगर आप यूज करते हो तो फिर वो पतला हो जाएगा, है ना, खीर के लिए उतना गाढ़ापन जो है वो हमारी खीर में नहीं आएगा। सो ऑलवेज यूज की फुल फैट मिल्क। उसके बाद में जैसे हमने बासमती राइस लिया, तो इसके जगह आप बासमती टुकड़ा अगर प्रेफर करो ना, तो उससे मतलब ये जो राइस होता है ना, तो उसकी जगह पे अगर आप टुकड़ा यूज करते हो तो छोटे जो चावल रहते हैं ना, इसमें स्टार्च ज्यादा होता है, मतलब नेचुरली वो दूध को जल्दी से गाढ़ा कर देता है। सो इसके लिए बासमती टुकड़ा अगर यूज करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको आपका समय बचाना है, थोड़ा सा क्विक, मतलब आपको फटाफट से बनाना है, आपके पास उतना टाइम नहीं है दूध को इतनी देर गाढ़ा होने देना है, इतना वेट करना है, तो आप और एक चीज कर सकते हो कि मिल्क दूध को उबाल कर निकाल लेना है, तो इससे भी आपकी जो खीर है वो मलाईदार अच्छे से बन जाएगी। बहुत से बार ऐसे होता है कि सादे जो चावल, रेगुलर चावल, हमने उसको उबाल लिया पहले बाहर ही, मतलब अच्छे से पका लेने हैं चावल जो है, मेक श्योर कि उसमें आपने नमक नहीं डाला हो, हाँ, बाहर जो पकाए है अलग से चावल, इसमें आपने नमक नहीं डालना है। और ये पके हुए चावल हल्के से मैश करते हुए हमने उबलते हुए दूध में ऐड करना है, मतलब जैसे हमने चावल डाले उधर धुलकर, तो वैसे यहाँ पे आपको चावल अलग से कुक किए हुए वो आपको मैश करते हुए इसके अंदर ऐड करते जाना है। तो इस तरह से भी आप बनाते हो तो कम समय में, जैसे टाइम सेविंग ट्रिक्स बोल सकते हो आप इसको, कि आपको अगर टाइम बचाना है तो उस समय आप ये ट्रिक्स को यूज कर सकते हो, या तो मिल्क पाउडर का यूज करके उसको थिकनेस ला लो, या तो फिर बचे हुए चावल, या फिर अलग से पकाए हुए चावल, या फिर आपने ऑलरेडी दाल चावल बनाए हैं उसमें से थोड़े से चावल लेके खीर में डाल देना है, तो ये फटाफट वाली रेसिपी बन जाएगी आपकी। सिर्फ याद रहे कि उसमें नमक ना हो, ओके, उसमें नमक जाता है तो दूध के साथ नमक का कॉम्बिनेशन नहीं जाएगा। सो इसके लिए आपने याद रहे कि अगर बाहर से पका कर चावल डाल रहे हो तो बिना नमक वाले चावल होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है कि
आपने कभी भी खीर को फुल आंच पर नहीं बनाना है, है ना, तेज आंच पर ही बनाना है। क्योंकि अगर आप फुल आंच करते हो ना, तो कभी कभी ऐसे होता है हल्का सा नीचे लग जाता है जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन जब आप खीर खा रहे हो ना, तो तब वो जला हुआ स्मेल आपका उसमें ज़रूर से आएगा, है ना। तो वो खीर का पूरा मज़ा ही चला जाता है अगर उसमें वो जली हुई स्मेल आने लगती है तो, है ना। तो इसके लिए कभी भी बीच में भी हमें कितना भी आलस आने दो, गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है, कम पे ही होने देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम ऐसे करते हैं कि चीनी डालते हैं बस घोलते ही गैस बंद कर देते हैं, तो ये कभी भी नहीं करना है। चीनी डालने के बाद में खीर पतली हो ही जाती है, क्योंकि चीनी का पानी बन जाता है और उससे उसकी कंसिस्टेंसी लूज हो जाती है। सो चीनी डालने के बाद में एक 5 से 7 मिनट उसको फिर से गाढ़ा होने दे, और उसके बाद में ही उसको गैस को आपको बंद करना है। सो इस तरह से देखो हमने कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है। अगर आपको फास्ट बनाना है, टाइम नहीं है, सो क्विक रेसिपी कैसे ट्राई करनी है ये भी देख लिया है। और आपके भी कुछ यूजफुल, जैसे आप भी सालों से बनाते आ रहे हो, तो अगर आपके भी पास कुछ यूजफुल टिप्स है वो भी आप इसमें यूज करके बेहतरीन रेसिपी बना सकते हो।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजी नगर
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।
2: मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
3: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

money!

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: फिल्मी दुनिया में कुछ ना कुछ तो हर दिन होता ही रहता है। तो सबसे पहले बात है अजय देवगन की दृश्यम 3 की, और दृश्यम 3 द कंक्लूजन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में स्ट्रांग ओपनिंग के बाद चौथे दिन तक वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ की कमाई भी की है। विजय सालगांवकर की कहानी का सस्पेंस ऑडियंस को थिएटर तक लेकर जाने पर मजबूर कर ही देता है। तो आपने देखी या नहीं अभी तक दृश्यम 3? और मैंने तो अभी नहीं देखी, मैं देखने वाला हूँ, लेकिन लोग कह रहे थे कि भाई दृश्यम 3 कंक्लूजन तक बस हो गया, आप यहाँ पर ये कहानी को यहीं एंड कर दीजिएगा, वरना खुद वो लाश बाहर आकर कहेंगे कि भाई बस भी कर, मुझे सुकून से मरने तो दे। खैर फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है, रिव्यू भी बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, तो आपने देखी नहीं है तो देख लीजिएगा। और एक अपडेट है कि आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की उड़ता तीर जो पहले 9 अक्टूबर को आने वाली थी उसको अब पोस्टपोन कर दिया गया है, 30 अक्टूबर 2026 को ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। तो भाई बॉलीवुड में कहानी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलती, रिलीज डेट्स, बॉक्स ऑफिस और सेट पर भी फुल ऑन ड्रामा चलता ही रहता है। ऐसी फिल्मी अपडेट के लिए मैं आपके साथ बना रहूंगा कुछ देर के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

फिर से एक बार अपने शहर में हो गया है डिजिटल अरेस्ट और इसके चक्कर में लाखों रुपए अकाउंट से गायब हो गए। तो बात कुछ ऐसी कि एक लेडी है अपने शहर में जिन्हें कॉल आता है और कहते हैं कि तुमचं आधार कार्ड चोरून एका बँकेत बनावट खाते उघडण्यात आले आहे आणि त्यातून टेरर फंडिंग होत आहे आणि मनी लॉन्ड्रिंग सुरू आहे। 2 तासात तक्रार नोंदवली नाही तर तुम्हाला जेलमध्ये जावं लागेल। और ये बात सुनने के बाद उन लेडी को लगा की भाई ऐसा तो सच में हो गया है शायद मेरे साथ, और उनकी एज भी 70+ थी और उन्हें लगा की अब मैं अरेस्ट नहीं होना चाहती हूँ और इन सब चीजों से मुझे बाहर निकलना है। तो स्कैमर ने क्या कहा कि अभी हम आपको डिजिटल अरेस्ट करने वाले हैं, आप हमारे सामने से कहीं जा नहीं सकते, अगर आपको इससे छुटकारा चाहिए तो आपको 13 लाख रुपए भरना पड़ेगा। उन्हें लगा कि यार ये सब चीजों से बचना है तो मैं 13 लाख पे करूंगी। उन्होंने वो 13 लाख रुपए पे कर दिए और ये हो गया उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट के नाम से। हालांकि ऐसा 3 करोड़ का भी फ्रॉड अपने शहर में हुआ था कुछ दिन पहले ही और ये एक सामने आया है नया फ्रॉड। तो भाई साहब, बहन जी, दादाजी, दादी, आप सभी से दरख्वास्त है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। ऐसा खुद पुलिस डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि ऐसा कोई अरेस्ट होता ही नहीं है। और ऐसे डिजिटल अरेस्ट ना आज के वक्त में बुजुर्ग लोगों के साथ बहुत हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ना तो इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। यूथ से एक दरख्वास्त है कि आपके मम्मी पापा, दादा दादी हो, जो भी बुजुर्ग इंसान हो, उन सभी को इस बारे में अवेयर कीजिएगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। और अगर कोई आपको फोन करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे तो उसे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मत कीजिएगा। एक अवेयरनेस से क्या पता सामने वाले का लाखों का नुकसान होते होते रह जाए। तो ये बात समझाना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होना इसकी बहुत जरूरी है। तो सभी से दरख्वास्त है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती, तो ऐसे फ्रॉड का शिकार मत बनिएगा। बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड। ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: अक्टूबर के महीने में ना तो सूरज देवता ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए, यानी कि अक्टूबर हीट के चटके तो हमें बैठ ही रहे हैं। और जायकोडी डैम से पानी का लेवल तेजी से कम होते हुए नजर आ रहा है और आने वाले 8-9 महीने हमारे शहर के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि फिलहाल सब तरफ सूखा सूखा और सूखा नजर आ रहा है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका ने अभी से एक्शन प्लान तैयार कर रही है और कहा गया है कि शहर में जितने भी कुएं हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या फिर प्राइवेट हो, उनका सर्वे करने का आदेश दिया गया है और ऑफिशियल रिकॉर्ड में अभी तक 134 कुएं रजिस्टर है अपने शहर में। और इनका सर्वे क्यों करने वाले हैं जानते हो? क्योंकि आने वाले वक्त में अगर पानी की कमी हमारे शहर को महसूस हुई तो इन कुएं के जरिए ना अपने शहर को प्रॉपर तरीके से पानी प्रोवाइड कर सके। और आपको एक बात याद दिला दूं, 1972 का दुष्काल हम सभी को पता है, हमने इसकी कहानी अपने दादा दादी से सुनी होगी। तो उस दरमियान हिमायत बाग की फेमस शक्ल बॉडी ने पूरे शहर की प्यास बुझाई थी और तब के दुष्काल में भी ना तो ये कुआं बिल्कुल भी नहीं सूखा था। तो आने वाले वक्त में अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है तो हमारे शहर के जितने भी कुएं हैं ना, तो उनके जरिए शहर की प्यास बुझाने का काम ये महानगर पालिका करने वाली है। सो दोस्तों, सरकार अपना काम तो कर रही है, हमें भी अपना फर्ज निभाना होगा। पानी फजूल में वेस्ट मत कीजिएगा, जितना हो सके उतना उसको संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सेव वाटर ये बस एक कोट नहीं है, ये हमें अब जिंदगी में अमल करने वाली बात भी है। सो एक समझदार नागरिक बनिएगा और पानी वेस्ट मत कीजिएगा और सुनते रहिएगा।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: मुझको रोको, मैं बोला ही।
1: लेट्स टॉक अबाउट सिटी अपडेट। सिटी अपडेट पे बात कुछ इम्पोर्टेंट है भाई। तो कुछ ऐसी बात है कि देखो भाई, फिलहाल ना तो बरसात तो नहीं हुई इस साल, और जहाँ देखो वहाँ पर बस हमें सूखा सूखा नजर आ रहा है। और इस दरमियान ना तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है पानी की। जी हाँ, पानी की दिक्कत होती है। और हम लोग ऐसा पानी यूज करें जैसे कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा पानी है। तो मेरी जान भाइयों बहनों दोस्तों अजीज साथियों, आप सभी से दरख्वास्त है कि पानी का आहिस्ता से और जरूरी है उतना ही यूज कीजिएगा, और फजूल में पानी मत फेंकिएगा। कारण की महानगर पालिका ने आता एक आदेश काढलेला आहे की जे पाण्याचा गैरवापर करणार आहे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुद्धा करण्यात येईल आणि त्यांना फाईन सुद्धा लावण्यात येणार आहे। सो ऐसे फाईन लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी सिंपल सी बात है, हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है कि जरूरत है उतना ही पानी यूज कीजिएगा, फजूल में पानी मत फेंकिएगा। बट बड़े होने के बाद ये सारी बातें हम भूल जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पर ना तो लोग यूं ही पानी फेंक देते हैं, गाड़ी धोने के बहाने बहुत सारा पानी यूं ही वेस्ट हो जाता है, और घर पर नहाते वक्त भी शॉवर का यूज करते हैं तो उससे ज्यादा पानी वेस्ट होता है। तो ऐसा पानी यूज कीजिए जिससे जरूरत है उतना ही पानी आपको लगे और बाकी पानी आप सेव कर सके, क्योंकि आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि पानी की कमी तो हो ही सकती है, क्योंकि हमें पानी सप्लाई होता है जायकवाडी धरण से, और वहाँ की भी पानी की सिचुएशन आप देखोगे तो थोड़ा पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका असर सीधे हमारे शहर पर हो सकता है और होने भी वाला है। फिलहाल जो पानी आपको मिल रहा है किसी एरिया में 8 दिन में एक बार हो, किसी एरिया में समझो 2 बार मिल रहा है, तो आने वाले वक्त में वो थोड़ा शॉर्टेज भी हो सकता है। तो इन बात का ख्याल रखिएगा और जितने पानी की जरूरत है उतना ही पानी यूज कीजिएगा। सिंपल सी बात है, अमल कीजिएगा इस बात पर। एंड स्टे ट्यून्ड
2: ओनली ऑन MGM 90.8।

सोचो जरा, लाइट की हेल्प से ब्रेन की स्पेसिफिक सेल को ऑन ऑफ किया जा सके तो। वैसे साइंस फिक्शन लगता है ना ये, लेकिन ये पॉसिबल बनने वाली रिसर्च के लिए 2026 का नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 3 साइंटिस्ट को दिया जाने वाला है, पीटर हेगेमैन, जॉर्ज नेगल एंड कार्ल डेसिरोथ। हेगेमैन और नेगल ने एक सिंगल सेल एल्गी में चैनल डिसोप्सिन

0: का पावरफुल टूल बनने वाली है। इस रिवॉल्यूशनरी वर्क के लिए इन तीनों को पीटर हिगेमैन, जॉर्ज नागेल एंड कार्ल डिसरोथ को नोबेल प्राइज से नवाजा जाएगा। सो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट था, स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8.

प्लास्टिक मुक्त छत्रपती संभाजीनगर ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती आणि मदात कुठेतरी ही एकदम लूज पडली होती। और हमें लग रहा था कि भाई ये तो बस चार दिन की चांदनी थी, उसके बाद क्या हर जगह हमें बस प्लास्टिक तो दिखाई देगा। महानगर पालिका जो एक्शन मोड पर थी और हर दुकानों पर जाकर चेक कर रही थी, कार्रवाई कर रही थी, और बीच में थोड़े दिन उन्होंने वो स्टॉप कर दिया था और फिर सिचुएशन जैसे की वैसी हो गई थी। और इस पर फिर बहुत उन्होंने नाम रखा और कहा कि यार महानगर पालिका का काम ऐसा ही होता है, चार दिन चलता है, पांचवें दिन बंद गिर जाता है। और शायद से बात नगर पालिका को बहुत दिल को लगी और उन्होंने फिर से मुहिम शुरू कर दी है प्लास्टिक मुक्त छत्रपति संभाजी नगर। अब इसमें हो क्या रहा है कि अगर आपकी दुकान पर आप प्लास्टिक कैरी बैग यूज करते होगे, प्लास्टिक यूज करते होगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। या फिर आप प्लास्टिक सेल करते होगे, प्लास्टिक कैरी बैग वगैरह, तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा लाखों का फिलहाल फाइन शहर को वसूल किया जा रहा है। तो आप सभी से दरख्वास्त है आणि एक विनंती आहे की जर तुम्ही कुठे मार्केट मध्ये जात असाल तर घरूनच एक बॅग घेऊन जा आणि दुकानांमधून प्लास्टिक कॅरी बॅग घेऊ नका। नाहीतर जे प्लास्टिक कॅरी बॅग ठेवत आहेत त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई होणार आहे आणि ज्यांनी ती प्लास्टिक बॅग घेतली आहे त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई होणार आहे। प्लास्टिक मुक्त छत्रपती संभाजीनगर हमें करना है तो शुरुआत हम सभी को अपने आप से करना ही पड़ेगी। आप कहोगे कि यार मेरे अकेले से क्या ही होगा, वो महात्मा गांधी जी कहते हैं ना कि एकला चलो रे, अकेले से शुरुआत तो कीजिएगा, धीरे धीरे बदलाव आपको पूरे शहर में नजर आएगा, बट शुरू करना पड़ेगा हमें खुद से, क्योंकि प्रशासन तो रूल्स और रेगुलेशन लाएगा ही, हम खुद ने वो चीज अमल की ना अपने मन से, तो जरूर अपना शहर प्लास्टिक फ्री हो ही जाएगा। सो अमल कीजिएगा और शुरुआत खुद से कीजिएगा, समझे? आई नो आप समझदार हो, समझोगे ही। स्टे ट्यून्ड।

0: हेलो, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया हो तो हो गए अभी आप।
1: Only on MGM 90.8 FM.
0: तो बात कुछ ऐसी है कि देखो भाई साहब, शो में तो मेरी और आपकी बातें तो होती रहती, मुलाकातें होती रहती, लेकिन आफ्टर शो भी ना तो हम कनेक्ट रह सकते हैं। वो कैसे जानते हो? सोशल मीडिया के जरिए। सो इंस्टा आईडी याद रखिएगा, आरजे अदनान इस बंदे का इंस्टा आईडी है। वहाँ पर भी ना तो मनोरंजनात्मक चीज़ें जो होती वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि इंस्टा के ऊपर तो भाई क्या होता है, विदाउट फिल्टर वाली चीज़ें होती है और मस्त मौला माहौल होता है। तो आफ्टर शो भी हम कनेक्ट रह सकते हैं। सो मेरा इंस्टा आईडी आरजे अदनान, उसको फॉलो कीजिएगा। कुछ मैं रील्स अपलोड करता हूँ ना, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी, चाहे फिर वो कुछ सॉन्ग डिकोडिंग के हो, शायरी के हो, कॉमेडी के हो, ऐसा मिक्स एकदम कल्चर होता है। सो देखिएगा जरूर। और हाँ, इसी के साथ MGM 90.8 FM का ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, उस पर भी जाकर आप फॉलो नाम का जो बटन है वो प्रेस कर सकते हो। और बाकी शो के रिलेटेड कुछ सजेशन हो गए, कुछ फीडबैक हो गए, आप वहां पर DM में मुझे लिखकर भेज सकते हो। आईडी याद रखिए, आरजे अदनान, अज्ञान नहीं, वरना मेरा नाम का बदनाम करना बहुत अच्छे से आता है लोगों को, अदनान का अज्ञान कर देते हैं। RJ_ADNAN इतना याद रखिए। बाकी तो आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा। Only on MGM 90.8 FM.
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: कहना है
1: मुझे भी कुछ कहना है
0: मुझे कुछ कहना है
1: मुझे भी कुछ कहना है
0: पहले तुम
1: पहले तुम
0: पहले तुम
1: पहले तुम
0: पहले तुम
1: तुम
0: तुम
1: तुम
0: तुम
1: तुम
0: तुम
1: तुम देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

দেখো নিয়ায় জীবন জন্ম বৃথা গিয়ে রত রত